बच्चों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: आज माले चो चो चो चो चो ओहो घर पुजे घरे ओहो गोपाल ने परेवाला भाई लाठी हरू क्यों पारा थी मम्मी
1: खाड़ा कौन खाड़ा ले उड़ा पूरा कुछ कह

0: यो BFBS गोरखा रेडियो हो।
1: मामा रेडी टू शेक द थिंग डांस विद मी, कम ऑन डोंट बी शाय, कम ऑन कम विद मी।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?